जो हर प्रभावे है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाहे हो हर सब नाते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जग जीता, जग जीता सब कोए, नामे कार्ज सिद्ध है, सहजे होए सो होए, गुरमत मत अचल है।

माया का संबंध नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्त अंध महला चौथा अंधे चानन ता थी जा सतगुर मिलै रजाए बंधन तोड़े सच वसै अज्ञाना दे राजाए सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज नानक शरण करतार की करता राखै लाज पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै तदों पुछना सेवक बिया तदों क्या को लेवै क्या को देवै जा अवरना दूजा किया फिर आपे जगतो पाया करतै दान सबना को दिया आपे से बनाईयन गुरमुख आपे अमृत पिया आप निरंकार आकार है आपे आपे करै सोथिया सलोक महला तीजा गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा अंदन सहज प्यार सदा आनंद गावै गुण साचे अर्ध उर्द उरतार अंतर प्रीतम वसिया तुर कर

सब कोए गुरप्रसादी जीवत मरै हुक्म बूझै सोए नानक ऐसी मरनी जो मरै ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होवै हर स्वामी ता अपना नाम हर आप जपावै आपे सतगुर मेल सुख देवै अपना सेवक आप हर पावै अपनिया सेवका की आप पैज रखै अपनिया भगतां की पैरी पावै धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवै जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा होर केती चख चख आवै जावै श्लोक महला तीजा राम राम करता सब जग फिरै राम ना पाया जाए आगमा गोचर अत उड़ा अतुल ना तुलिया जाए कीमत कने ना पाईया कितना लिया जाए गुर कै शब्द भेदया इन विद वसिया मन आए नानक आप अमेव है गुर कृपा दे रहा समाए आपे मिलिया मिल रहा आपे मिलिया आए महला तीजा ए मन एहो तन नाम है जित सदा सदा सुख होए तोटा मूल ना होवई तोटा मूल ना होवई हानत कदे ना होए नानक गुरमुख पाई है जा कौ नदर करे पौड़ी आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त बरतदा आपे ही जाहर जुग छत्ती गुबार कर वरतिया सुन्ना हर उथे वेद पुराण ना सास्ता आपे हर नर हर बैठा।

0: Call 204-772-1313. Canada's number one provider of training, consulting, and software for the transportation industry. ACE ACI, e-manifest, permits, CTPA, and more. Visit avaal.com.
1: Financial success planning naal aunda hai, na ki sirf kismat naal. Daljeet Kaith Noora Financial to tuhannu guide karde ne retirement, investments te tax planning vich simple, clear te result oriented approach naal. Book karo apni consultation aaj hi. Call 204-979-0786. Noora Financial. Future nu secure karo aaj ton.
2: Itthe aake bachyan nu ek behtar zindagi den da supna ta pura hunda nazar aaya hai. ਪਰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ
3: ਇਹ ਡਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆ ਵਸੇ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਸ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ Flexible timings, free demo class. Aaj hi call karo 204-463-0110.
4: Winnipeg valeo, tiyar ho jao Garcha Bros di 1115 Gateway Road. Location reopen ho gayi hai.
5: Naveen management team to special reopening prices de naal. 1115 Gateway Road store, fresh look, fresh team, teo hi Garcha Bros da delicious taste.
4: Enjoy karo crispy fish pakoda, marinate chicken legs and thighs, wings, tikka, fish, goat, lamb, veg option and healthy non-fried oven cook items. Har family, har party de lai perfect.
6: Winnipeg valeo, Garcha Bros Gateway te crispy fish pakoda di सिर्फ $8.99 दी स्पेशल प्राइस नो मिस ना कर जाइयो
5: विजिट गर्चा ब्रोस 1115 गेटवे रोड यूनिट 5 लोकेशन
7: गर्चा ब्रोस टेस्ट दैट ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर
8: तुसी सुन रहे हो विनीपेग दा असली रेडियो रेडियो तमाल
9: भाई साडा बापू मक्खन सों कहंदा हुंदा सी भाई माड़े हाथ लगी चीज बहुते दिन नहीं कड़दी सो भाई ये गड्डी जान ना रखी है ता फिर रिपेयर भी ता चंगे था होनी चाहिए थी अपने ऑटो वर्क्स वाले हैं ना एक मेक ते मॉडल दिया कारां दी तसल्ली बख्श मैकेनिकल रिपेयर कर दे ऑयल चेंज व्हील अलाइनमेंट टैक्सी लिमोजिन दी सेफ्टी कर दे भाई बॉडी दा को माड़ा मोटर रिपेयर दा कम एंड एंटिंग पेंटिंग दा ओ भी हो जू जे विंडशील्ड रिपेयर करवानी है जा फिर करवानी है रिप्लेस ओ भी चक देंगे हां नाले जे होर गड्डी लैण दा विचार है पर यूज्ड कारां भी हुंदियां ना कोले भाई जाना किथे अपने 306 स्टैनले स्ट्रीट विनीपेग याद रखियो सिकंदर नु फोन कर लियो ऑटो वर्क्स वाले 204-942-4690 भाई 204-942-4690 नब्बे
3: की तुहाडा भी एक सपना है के अपना घर होवे ता इको एक नाम याद रखियो वेंचुरा कस्टम होम्स ते विनमैक्स रियल एस्टेट दे बॉबी सिंह जी दा इना कोल है 15 साल तो भी ज्यादा दा तजुर्बा वेस्ट सेंट पॉल हाईलैंड पॉइंट रिवर स्प्रिंग जा शहर दे किसी भी एरिया विच इना दी मदद नाल अपने कस्टम ते मॉडर्न होम बनाओ बॉबी सिंह होरा कोल इस समय नवे घरां दियां बहुत सारिया प्रमोशंस हन कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी होवे कॉल बॉबी सिंह 204-510-9485 204-510-9485
10: ट्रैवल द प्लान है वीजा दी टेंशन है या इंश्योरेंस दी लोड है ता फिर याद रखो मान इंटरनेशनल ट्रैवल वीजा असिस्टेंस अमेजिंग वेकेशन पैकेजेस डोमेस्टिक ते इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स ओ भी ग्रेट डील्स नाल ते हर तरह दे इंश्योरेंस कॉम्पिटिटिव रेट्स नाल सत कन्वीनिएंट ऑफिसेस लोकेशंस ते 24/7 सर्विस हजारां लोकां दा भरोसा फास्ट रिलायबल ते फ्रेंडली सर्विस आज ही कॉल करो 204-202-0104 याद रखो मान इंटरनेशनल ट्रैवल योर ट्रस्ट Travel partner, we are open 24/7 to serve you.
11: This is Sunneya, Winnipeg, the Asli Radio. Radio Tamal.
12: Radio Tamal.
11: Radio Tamal.